अंदर पत्र गवाई बिरणा वह किछ थाई न पाई रहे विवाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नामन वसाए नानक नदर करे सुपाए आस अंधे से तेने केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपयापा कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खाप होए खार कूड़ कूड़े नहीं हो लगा बिसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा।

पत्थर गुण हुआ, नव खुदाई अनु भया, नील वस्त्र कपड़े पैर तुरठाणी मलखिया।

नाक वखण जो सेव हैं जो सेव हैं तुदजी जन नानक तिन कुरबण हरते आवहें तुदजी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तबदा बहें जपहें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमर शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुदे आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ में दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़या संजोगी में जिसना तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद में दूजा अवर ना कोए तू कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़े पहिले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तहें डूबी अरे मान एक न चेतस मूड मना हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवंत नानक तिनकी शरणा जैन तू ना ही विसरिया आसा।

ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਈ ਵਿਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਨਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖ ਹੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਨਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਹੋ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬੀਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਓ ਪਾਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨ ਨਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੈ ਤੁਮ ਘਾਵ ਹੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵ ਹੋ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੇ ਕਰੀਏ ਸਵੈ ਰਿਣ ਕੋ ਆਇ ਸੰਗਰੀਏ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮੈਂ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰਨਾ ਤੇ ਆਊਂ ਜੋ ਵਰ ਚਹੋਂ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਤਾਰੀਏ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸ਼ਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਏ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੇ ਉਬਰੀਏ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰੀਏ ਹੋ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁ ਜੋ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਹੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨਮਨ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਵਣ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ ਬੇਦਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ ਜਵਣ ਕਾਲ ਸਵਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਜਵਣ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜੱਛਣ ਉਪਜਾਇਓ ਆਦਿ ਅੰਤ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀਓ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖੋ ਦੀਓ ਸ਼ਤਰਨ ਕੋ ਪਲਮੋ ਬਦ ਕੀਓ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਚਿੰਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛੰਨੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜਾਵਦ ਕਰਕ ਕਰਾ ਕਰ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਤਰਤ ਤਵ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ
जवया करख कर तोह कबहू तुम मैं मिलत देह धर सबहू जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचार तुम साही ते रहत नर आलम जानत भेद भेद अर आलम रंकार निर्विकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मोड़े उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताको कृपाहणे अनुमानित महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव रंकार का चीनत न है पिव आप अपनी बुध है जेती बरनद भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जय पसारा किही विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुपज रूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंड जेर से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो समट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आ जुगा स्वरूप स्वयंप अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार असिख संघरो दुष्ट जीते उठवद उत्पाता सकल मलेच करो रण गाता जे आस तो जे तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बार ते है ताकि काल निकट नह है रक्षा हुए ताहि सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जहे न हरिओ ताकि ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह शवय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे ओबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद्र दुष्ट दोख तेरा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सरठो मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उभारी सरठो मोह हो सहाई दुष्ट दोख दे ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कोहूँ आँख तरे नहीं आने राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक न मने सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुभेद कहें हम एक न जाने श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना गए हो सब तो ही बखने दोहरा
सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार, मही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार। सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार, मही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार। राम कली महला तीजा अनन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता वाया सह सेती मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया, शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी बसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, इमन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना। अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना, सवना गल्ला सम्रत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरे, घर दा तेरे सब किछे है जिस दे हैं सो पावे। सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मान वसा वाहे, नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरे, सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा। जैनो भुखा सब गवाइया करशां सुख मने वसया, जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो। जिस दियां एह वडियाइया कहे नानक सुनहो संतो, शबद धरो पे आरो सच्चा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे। कहे नानक तै सुख होआ तित घर अन्न हद वाजे, आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पये सरसे पूरे गुर ते जानी, सोना ते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे सोनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे।
मंदामणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरी है सब नानक ब्रह्म पसरो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ

सत पाए संगत सगन गुरु मत निरवैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना पर सह संत पिया।